0: लाइक एक फैमिली ऑफ 10 का रिकॉर्ड है फिलहाल, अभी जो करंट रिकॉर्ड है फैमिली ऑफ 10, मतलब उनके 8 बच्चे थे एंड तो उनकी 135,000 तक चली गई थी फंडिंग, जिसमें से $70,000 ग्रांट था। बट मुझे लग रहा है ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। अभी एक और लाइक केस पाइपलाइन में है जिनके लाइक फैमिली ऑफ 12 है वो, तो अगर वो हो गया तो दैट वुड बी द हाई।
1: फैमिली ऑफ 12?
0: हाँ जी
1: कौन फैमिली ऑफ 12?
0: हाँ जी, हाँ जी सर, आपको क्या लगता है पंजाबी लोग ही है क्या हमारे पास?
1: नहीं बट फिर भी फैमिली ऑफ 12। अच्छा जी, फैमिली ऑफ 12 है, उन्होंने कितनी फंडिंग मर जो?
0: उनका एस्टिमेटर पे शो कर रहा है 157,000 की फंडिंग।
1: अच्छा क्या बात है।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो वाइड हमारे पास लाइक ऑल लाइक बड़े बड़े डाइवर्सिफाइड हमारे पास, हम कम्युनिटीज को सर्व करते हैं 7 ईयर्स से एंड कोई कैच नहीं है। आप कॉल हमें अभी भी कर सकते हैं, एस्टिमेट ले सकते हैं। आज की डेट में आपको फायदा है, हमारा बिजनेस गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड है। लाइक हम एक जरिया है, हम ऐसे नहीं कि आज हम 50% ऑफ दे रहे हैं, कल 100% दे रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी आज है तो है, 1 महीने बाद नहीं है तो नहीं है। आज फंडिंग में ग्रांट्स आ रहा है तो आ रहा है, पीछे ना रहो, कॉल करो, असेसमेंट कराओ, तो फंडिंग टेस्ट कर दोनों हासिल करो।
1: वेरी गुड। सारांश का नंबर है 4372643175, 4372643175। सारांश एलिजिबिलिटी की है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोर्सेज लिए ते नॉन रिफंडेबल ग्रांट से लोन दे जे आप नैगरा रहने हैं। तुसी एक ता क्वेश्चन तीन करती हैं। पहली गल तो एलिजिबिलिटी की है ये दसो।
0: हाँ जी, अब इसमें लाइक आप कहीं भी रहते हैं ओंटारियो में, आप एलिजिबल हैं। आपकी 1 साल की रेजिडेंसी होनी चाहिए ओंटारियो की। आप चाहे कल भी अगर लैंड करें हैं ओंटारियो में एज अ PR, आप तब भी एलिजिबल हैं। और लाइक आप लाइक प्रोटेक्टेड पर्सन, आपका रिफ्यूजी का केस अप्रूव हो चुका है, आप सिटीजन है, आप एलिजिबल है। लेकिन मेन थिंग है, मेन थिंग, अगर आपकी इनकम कम है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, अभी अकेडमी के चल रहा है 25-26, इसमें 24 को NAO देखा जाता है। अगर कम है आपकी इनकम $70,000 से, तो ही आपको फायदा है, तो ही आप हमें कॉन्टैक्ट करें। ज्यादा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का ये लाइक दिस इज द गवर्नमेंट थिंग, राइट? बैंक तो है नहीं कुछ, ये देयर इज नो कैच इन इट। कॉल करें, असेसमेंट कराएं, 30 से 100,000 की फंडिंग डायरेक्ट अपने अकाउंट में हासिल करें। नो एज लिमिट, एंड लाइक हमारे क्लाइंट 75 के भी, 30 ईयर्स के भी हैं, पेंशन पे हैं, तो भी आप एलिजिबल है। एंड नो क्रेडिट चेक।
1: वेरी गुड। नो क्रेडिट चेक दे। सरांश नंबर एक बार दो।
0: हाँ जी, नंबर है जी 437-264-31-75, 437-264-31-75। फंडिंग आपके खाते में आती है हमारी फीस काम होने के बाद, $199 या $499 है।
1: तीसरा जे कोई दूर रहिंदा नायगरा फॉल ओशवा किते दूर ने, वो भी ले सकते हैं फंडिंग?
0: बिल्कुल जी, हमारे लाइक आप मान के चले 30% क्लाइंट्स GTA के बाहर के ही हैं, कुछ नायगरा के, कुछ बैरी के हैं। लाइक फुली ऑनलाइन कोर्सेज है, तो आराम से घर से कर रहे हैं वो, असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है। हाउसवाइफ, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर एंड लाइक बस सब बहुत ही कम टाइम रहेगा। आप कॉल करें, हम अभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको कॉल पे असेसमेंट देंगे हम। आप हमारे ऑफिस आए फिर लाइक जो भी आपके क्वेश्चन है पूछे, कोई कैच नहीं है। नंबर अगेन 437-264-31-75, 437-264-31-75, 437-264-31-75,
1: 437-264-31-75, 437-264-31-75 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ 437-264-31-75, 437-264-31-75। ਸੋ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਾਪਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਸੁਣੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ 9056733337, 9056733337, 905-673-3337 ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, 9056733337 ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਓਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਈ ਨਵੀ? ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੰਪਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਏ ਵਨ ਗੇਟ ਵਨ ਫਰੀ, ਬਾਏ ਵਨ ਗੇਟ ਵਨ ਫਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪਕੌੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਏ ਵਨ ਗੇਟ ਵਨ ਫਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਰੀ ਮਾਈ ਬੈਡ, ਬਾਏ ਵਨ ਤੇ ਦੂਜਾ $2 ਦਾ ਫਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ। ਚਿਕਨ ਪਕੌੜਾ, ਬਿਰਿਆਨੀ, ਫਿਸ਼ ਪਕੌੜਾ, ਪਾਓ ਭਾਜੀ 1 ਕਿਲੋ, ਦੂਜਾ $2 ਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਚਿਕਨ ਪਕੌੜਾ ਲੈ ਲਓ, ਦੂਜਾ $2 ਚ, ਇੱਕ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਦੂਜੀ $2 ਚ, ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਪਕੌੜਾ ਦੂਜਾ $2 ਚ, ਇੱਕ ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਦੂਜੀ $2 ਦੀ. ਸੋ 275 ਗਾਰਡਨ ਬਰੁਕ ਟ੍ਰੇਲ, ਗਾਰਡਨ ਬਰੁਕ ਕੈਸਲ ਮੋੜ, 85 ਮਾਂਟਪੈਲੀਅਰ ਸਟਰੀਟ, ਮਿਸਾਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, 15 ਫੈਂਡਰ ਵੇ, ਬਵੇਡਨ ਸਿੰਘ ਕਿਊਜ਼ੀ. ਸਿੰਪਲੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਸਿੰਪਲੀ ਦ ਬੈਸਟ, ਸਿੰਪਲੀ ਇੰਡੀਅਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ. ਐਂਡ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਿਸਪੋਕ ਹਾਈ ਐਂਡ ਟੋਪ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿਊ ਏਅਰਪੋਰਟ ਡੇਰੀ, ਕੁਈਨ ਕੈਨੇਡੀ, ਮਕਵੀਨ ਮੇਫੀਅਲ, ਫੈਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ. 9054532225. ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ 1 ਕਿਲੋ, ਦੂਜਾ 25% ਆਫ, ਫੈਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿਊ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, 647-622-3203. ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਯਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗੁਰਕਰਮ ਢੀਂਡ ਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਿਸਨਰਸ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਗੁਰਕਰਮ, 416-876-4605. ਗੁਰਕਰਮ ਢੀਂਡ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਗੁਰਕਰਮ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਊਨਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਤੁਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਊਨਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਲੋਕ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਣਗੇ. ਅਤੇ ਫਿਊਨਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ, 905-458-2222.

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498 Royal

सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल ना कभू झूरी है, सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानी है, सतगुरु होए दयाल ता हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों नू मानदे हुए जुड़ चुके जी कौर फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान रेडियो उड़ान प्रभ संत दे नाल।

सतगुर होई दयाल त सरदा पूरी है, सतगुर होई दयाल न कब हूँ झूरी है, सतगुर होई दयाल त दुख ना जानी है, सतगुर होई दयाल त हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक और फिर एक खूबसूरत सवेर चढ़ती कला वाली सवेर ते खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधू

0: जल्दी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: हेलो ब्रो, किथे है तू?
2: मैं क्लाइंट नु मिलन जा रहा, सोच रहा सी टिम हॉर्टन्स पे बैठ जाइए।
1: ओ यार, ये तो ओल्ड स्कूल हो गया। हुन तक क्लाइंट मीटिंग्स क्लासी होनिया चाहिदियां ने। नजारा रेस्टोरेंट लेके जाओ ना नु, प्राइवेट बूथ्स ने, फुल प्राइवेसी मिलती है, फ्री वाईफाई ते लग्जरी एंबियंस, बिजनेस मीटिंग भी सेट हो जांदी है ते खाना भी बहुत वधिया।
2: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
1: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी। कोई कॉल करो 9054512600, 9054512600।
3: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
4: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
5: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
6: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता?
7: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज्ज दा दिन अच्छा गुजरिया होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनैशनल खबरां नाल तुहानू जोड़ के रखिए। 21 तारीक नूं तीआं दा मेला हो रहा, उहदी जानकारी दित्ती जाएगी। सब तो पहला छतरी छत रिपोर्ट हाजिर है। सूरज सिंह कानूनी तौर पर 5:35 से आया, शाम 9:01 से चले जाना। मामा चांसल लवारस जाएगा, अज 9:32 से सवेरे आया, शाम को कदों जाना वह कोई यकीन नहीं है। और ये नाल दी नाल जिहड़ा तापमान है अज 22 डिग्री रख, थंडरस्टॉर्म झखड़ झोले सब कुछ आएगा। और जो इतने दरवाजा खोलन लगे ने

0: डोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्गिन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry, the intersection upper. Tusi cheap flight tickets Nepal de vichu Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options suno chahide ne. Ja tusi visa services Nepal de vichu puri family vacation upar jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upar. Call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection open.
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
8: 416-570-0157 जी, मैं हाँ तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल, ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनो दूर रेडियो सुखी निज्जर जी दे नाल।
9: जी दोस्तों, वतन दूर जी एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। इस टाइम टोरंटो दे विच तुसी 5:30 AM दे उत्ते वतन दूर दे नाल जुड़े हुए हो। साडे स्टूडियो दे विच रौनकां पूरियां लगियां होईयां। इस वीकेंड दे उत्ते तियां दा त्योहार है, तुहानू पता, सारे रल मिल के मना रहे, बहुत सारे आर्टिस्ट पहुंच रहे ने, ते बहुत सारे तुहाडे लई गिफ्ट, ते काफी कुछ होवेगा, असीं प्रोग्राम जानकारी देवांगे। पर उस दे नाल नाल अज इक तुहाडे लई बहुत खुशखबरी दी गल है। पंजाब जाने हो, तुसी तुहानू पता है कि कई बार जदों जाने हो पंजाब दे पिंडां च, आपां रहण वाले हां, ते पिंड जाके आपां साल बाद जदों जाईदा ते सफाई करके ते पेंट करवा के फिर वापस आउण दा समां हो जांदा, रहणा तुहानू उत्थे समां नहीं लगदा, नसीब नहीं हुंदा, ते रिपेयर वगैरह च जिन्ना समां लग जांदा। सो एक बड़ी खुशखबरी दी गल है कि एक GGR क्लब लॉन्च होण जा रहा जी, बिल्कुल आदमपुर एयरपोर्ट दे नजदीक, जलंधर डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर दे लागे, और कह लिए कि सारे काफी सिटीज

0: 32, 55, 80
1: 98
0: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
1: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
1: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 2828

0: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, ya Self-Employed di File, Gal ki, Immigration di har problem da solution lain lai, Community de jaane pehchane, ate tajrubekar Immigration Consultant, Gary Virk nu milo.
1: Koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya, hove immigration da koi bhi masla, hamesha yaad rakho ikko hi na, ate ikko hi tha. CIC Immigration, hone hi call karo, 416-456-6161.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 4 6 4 5 7 3 3 8 1 3।
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 4 6 4 5 7 3 3 8 1।
5: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com। ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ TV ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7।